0: it's okay. ये गीत से आवाज़ आ रही है
1: ना? मन में ए नहीं लाई लाई ना? ए तो जीजे कसम मस्तिक देख जाएगा। पूर्वेल आई ना? छह मार जान से मेरा टोन ठेके पूर्वेल जान दे ना? दो रिज़िक आउने पर है ना?

0: हे कि आओ नजिक कि भई जाओ पराई त कि भई जाओ पराई त म त जान्न पहाड़ र तराई त
1: कहाँ जाने त हे
0: हङकङ आई